तकरीबन कोई भी तरसील जापान नहीं जा रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ कहा है कि उन्होंने ईरान पर मनसूबा शुदा हमले को रोकने का फैसला किया है जो मंगल के रोज़ किया जाना तय था। ट्रंप ने कहा, मैंने इसे कुछ वक्त के लिए रोक दिया है, उम्मीद है कि शायद हमेशा के लिए लेकिन मुमकिन तौर पर कुछ देर के लिए, क्योंकि हमारा ईरान के साथ बहुत बड़ा तबादला ख्याल हुआ है और हम देखेंगे कि वो कहाँ तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर ममालिक के रहनुमाओं ने उन्हें 2 या 3 दिन के लिए मुलतवी करने को कहा है। उनका कहना था कि अगर अमरीका कोई ऐसा मुआहदा कर सकता है जिसके तहत ईरान को जौहरी हथियार हासिल ना हो तो हम मुतमईन होंगे। इससे पहले ट्रंप ने पोस्ट किया था कि उन्होंने फौजी रहनुमाओं से कहा है कि कोई मुआहदा तय ना पाने की सूरत में वो ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार रहें। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि तेहरान को पाकिस्तानी सालिसियों के ज़रिए अमरीकी जवाबी तजवीज़ मौसूल हुई थी। उन्होंने कहा कि तेहरान ने गुज़िश्ता चंद दिनों में तरामीम का जायज़ा लिया है और अब इसका जवाब दे दिया है, लेकिन तेहरान आब नए हुरमुस पर अपनी गिरफ्त ढीली करने के लिए बज़ाहिर तैयार नहीं है। सरकारी नशियाती इदारे IRIB ने कहा है कि आबनाए के मुंतजिम ईरान के नए इदारे ने एक ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट का आगाज़ किया है। IRIB का कहना है कि बहरी जहाज़ों को ये आबी गुजरगाह इस्तेमाल करने से पहले खलीज फारस आबनाए इंतज़ामिया के साथ राबता करना चाहिए और गुजरने के किसी भी बिला इजाज़त अमल को गैरकानूनी तसव्वुर किया जाएगा। मस्कुरा खबर में कहा गया है कि 1500 बहरी जहाज इजाज़त मिलने के मुंतजिर हैं।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। आलमी तिजारती तंजीम WTO की डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो एवियाला ने खबरदार किया है कि आलमी तिजारती निज़ाम 80 सालों में अपनी सबसे बड़ी रुकावटों का सामना कर रहा है। पीर को टोक्यो में एनएचके को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने निशानदेही की कि जहां दुनिया ने अमरीका की जानिब से महसूलाती इकदाम देखे हैं, वहीं दीगर WTO अराकीन ने भी मुख्तलिफ इकसाम के इकदाम नाफिज किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि निज़ाम में इसलाहात नहीं हो रही और यह निज़ाम वक्त के साथ हम आहंग नहीं हो रहा। WTO अपने फैसला साजी के अमल में इसलाहात की कोशिश कर रही है। इसके अहम चैलेंजेस में से एक ये है कि तमाम अराकीन के दरमियान इत्तफाक राय की शर्त की वजह से इसकी सरगर्मियाँ मफलूज हैं। अगरचे तंजीम ने मार्च में एक वजारती इजलास मुनाकिद किया, लेकिन तरीक़ाकार मंजूर करने में नाकाम रही। ओकोंजो एवियाला ने इस नाकामी की वजह अराकीन के दरमियान दीगर मसाइल पर इख्तलाफात को करार दिया, लेकिन जोर दिया कि पेशरफ्त हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि WTO अब भी अहमियत रखती है और निशानदेही की कि आलमी तजारत का 3/4 हिस्सा WTO की शराइत पर हो रहा है। जापान की मैशियत मुसलसल दूसरी सामाही में फैली है। इस नमू की बुनियादी वजह बरामदात में बहाली और सारिफ खर्च में इजाफा था। काबीना दफ्तर ने जनवरी से मार्च तक की मुद्दत के लिए इब्तदाई आदादोशुमार मंगल को जारी किए हैं। उनके मुताबिक अफरात जर के रद्दोबदल के बाद मजमुई कौमी पैदावार गुज़श्ता सामाही के मुकाबले में 0.5% बढ़ी है। सालाना बुनियाद पर यह शरह 2.1% बनती है। इनफरादी खर्च मजमुई कौमी पैदावार के निसफ से ज्यादा है। यह पिछले 3 महीनों के मुकाबले में 0.3% बढ़ा क्योंकि सार्फिन ने कपड़ों और बाहर खाने पर ज्यादा खर्च किया है। अमरीका को गाड़ियों की तरसील में बहाली के बायस बरामदात में 1.7% इजाफा हुआ। ये वाशिंगटन के महसूलात की वजह से होने वाली गिरावट के बाद की बहाली है। काबीना दफ्तर का कहना है कि ईरान तनाजे के असरात महदूद थे, तहम तवील मुद्दती नमू के बारे में तशवीश मौजूद है क्योंकि खाम तेल की मुसलसल बुलंद कीमतें कुछ कारोबारों पर बोझ डाल रही हैं।
1: और सामीन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा। हुकूमत जापान और हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें मशरक वस्ती की मौजूदा सूरत हाल तूल पकड़ने की सूरत में मुमकिन इक्तिसादी असरात से निपटने के लिए इकदाम कर रही हैं। जापान ने तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्क ब्राजील से कहा है कि वो खाम फराहमी का उसूल यकीनी बनाने में मदद दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज कहा है कि उन्होंने ईरान पर मनसूबा शुदा हमले को रोकने का फैसला किया है जो मंगल के रोज किया जाना तय था। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 19 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टियां पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात लंबे खींचने की स्थिति में संभावित आर्थिक दुष्प्रभावों से निपटने के उपाय तलाशने के प्रयास कर रही हैं। सोमवार को सरकार और सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी और जापान इनोवेशन पार्टी की बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने कहा कि सरकार स्थिति का उचित आकलन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आर्थिक गतिविधियां और जनजीवन बाधित होने से बचने के लिए समय रहते कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोनों दलों से जुलाई से सितंबर तक की अवधि के लिए गैस व बिजली की दरों के संबंध में ठोस उपाय तैयार करने को कहा। इस मामले के प्रभारी पार्टी अधिकारी जल्द ही उपाय तैयार करने की योजना बना रहे हैं ताकि इन दरों को पिछली गर्मियों की तुलना में कम बनाए रखा जा सके। एलडीपी के कार्यवाहक महासचिव हागियुदा कोइची ने पेट्रोल की देशव्यापी औसत खुदरा कीमत को प्रति लीटर लगभग 170 येन पर सीमित करने के मौजूदा उपाय का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये उपाय लंबे समय तक अपनाया नहीं जा सकता और हमें जनता को समझाने के प्रयास करने होंगे कि परिवहन लागत सहित विभिन्न कारकों के चलते कच्चा तेल महंगा पड़ता जा रहा है। सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टियां इन विचारों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में मदद का दायरा तय करेंगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जापान ने अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के प्रयासों के तहत कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख तेल उत्पादक देश ब्राज़ील से मदद का अनुरोध किया है। जापान के अर्थ व्यापार एवं उद्योग मंत्री आकाजावा रियोसे ने सोमवार को टोक्यो में ब्राज़ील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा से मुलाकात की। आकाजावा ने किसी एक क्षेत्र पर जापान की निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। वियेरा ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार को पहले जितनी ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। ईरान के हालातों के कारण सामान्य जलमार्ग बाधित हो गए हैं, जिनके चलते जापान अब ऐसे आपूर्ति स्रोत तलाश रहा है जो होर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल ना करते हों। ब्राज़ील 2024 में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था। होर्मुज जलडमरू मध्य प्रभावी रूप से बंद होने के बाद से ब्राज़ील के निर्यात में ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। हालांकि इस समय ब्राज़ील से जापान को होने वाला निर्यात ना के बराबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को किया जाने वाला नियोजित हमला टालने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा, मैंने इसे कुछ समय के लिए, उम्मीद है कि शायद हमेशा के लिए टाल दिया है, लेकिन संभवतः कुछ समय के लिए ही टाला है, क्योंकि हमारी ईरान के साथ बेहद अहम बातचीत हुई है और हम देखेंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों के नेताओं ने इसे 2-3 दिन के लिए टालने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को परमाणु अस्त्रों से वंचित रखने वाला कोई समझौता हो जाता है तो हम संतुष्ट होंगे। इससे पहले ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा था कि उन्होंने सैन्य प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि समझौता ना होने की स्थिति में वे ईरान पर भीषण हमला करने के लिए तैयार रहें। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान को पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से अमरीकी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में संशोधनों की समीक्षा की है और अब उसने जवाब भेज दिया है, लेकिन ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं दिख रहा है। सरकारी प्रसारक IRIB ने बताया कि जलडमरू मध्य का प्रबंधन करने वाली ईरान की नई इकाई ने एक आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है। IRIB के अनुसार जलमार्ग से गुजरने से पहले जहाज़ों को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट प्राधिकरण के साथ समन्वय करना होगा और किसी भी अनधिकृत आवागमन को अवैध माना जाएगा।
IRIB के अनुसार 1500 जहाज अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक ंगोजी ओकोंजो इवेयाला ने आगाह किया है कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था पिछले 80 वर्षों में सबसे बड़े व्यवधान का सामना कर रही है। टोक्यो में सोमवार को एनएचके के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि एक तरफ दुनिया ने अमेरिका की शुल्क संबंधी कार्रवाई झेली है, वहीं दूसरी ओर WTO के अन्य सदस्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है और वो जमाने के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। WTO अपनी निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास कर रहा है। इसकी प्रमुख चुनौतियों में से एक ये है कि सभी सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक है, लेकिन ऐसा न होने पर इसका काम ठप पड़ जाता है। संगठन ने मार्च में एक मंत्री स्तरीय बैठक की, लेकिन वो कोई कार्य योजना अपनाने में विफल रहा। ओकोंजो इवेयाला ने इस विफलता का कारण अन्य मुद्दों पर सदस्यों के बीच मतभेद बताया, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि प्रगति हुई है। उन्होंने वैश्विक व्यापार का 3/4 हिस्सा WTO की शर्तों पर होने का हवाला देते हुए जोर दिया कि WTO का महत्व अब भी है। जापान की अर्थव्यवस्था में लगातार दूसरी तिमाही में वृद्धि दर्ज हुई है। निर्यात में पुनः बढ़ोतरी और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि इसके मुख्य कारण रहे। कैबिनेट कार्यालय ने मंगलवार को जनवरी से मार्च तक की अवधि के लिए अपने प्रारंभिक आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में पिछली तिमाही की तुलना में 0.5% की वृद्धि हुई है। यह 2.1% की वार्षिक दर के बराबर है। GDP में निजी उपभोग का योगदान आधे से अधिक है। पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 0.3% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं ने वस्त्रों और बाहर खाने पर अधिक खर्च किया है। अमेरिका को वाहन निर्यात में सुधार के चलते कुल निर्यात में 1.7% की वृद्धि हुई। अमरीकी शुल्कों के कारण वाहनों के निर्यात में आई गिरावट के बाद ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। कैबिनेट कार्यालय का कहना है कि ईरान संघर्ष का प्रभाव सीमित रहा, लेकिन दीर्घावधि में आर्थिक विकास को लेकर चिंताएं हैं क्योंकि कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतें कुछ व्यवसायों पर बुरा असर डाल रही हैं।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
3: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.